0: हो हाथी काम चुप पे
1: काम चुप पे कत ही कुते बा मामा कुते ला काम आ अरे ले हुआ मा कुते तो ओ तो फका ता ता नहीं
2: को वाई
1: तना को आई ना रे दा ए चु ता तो हे वाई तक आई ता रे
2: वाई तो ओरे रे
3: तितो आ किते मुरोते आहिए
1: को चुबा तो मा मा हिए करे मा हे वाई हॉकी मा यानो केरो वानो को तो इते पाई ओते रे माओरी मेते वाई रो पुकु गता क्या हॉकी Mai no ko to ko to te kanga aro ha mai ko mai wore wore te kuro maori nga waka to tituru nei inga waka to ko puku hoi te nei mi hiatu nei porara